0: ना
1: छ सापन कुछ नहीं कराय सम सांप कुछ नहीं करत लिया वो अपने चल गए कुछ कराय त वो सब कुछ सांप बिखा फिर नहीं रहता
0: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिना दाई
2: लिया नेपाल में पा दिना बिखा सांपन के विषय में सुन एक गरेचा जोन खास कह खा, राति समय में घर भीतर बैठ सेक ई कटल से निबाई फिर सक तर कटलक पाछ डे भाग जो निचलना कह सास फ्यार जो निसेकना में से लक्व हो सकता और रथ डोम जोन बड़ा रिसाहा में हिक रथ निकर फाट फूले डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह संध्या बिहान देख पड़ निकर कटल से फिर लक्व हो सकता वो और रथ कैली जाटक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत से पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक था
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिवेर सापन का दसाई का घटना धीर बिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिड टाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmctikapur@gmail.com।
10: टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौँ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौँ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था। तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला, यौन, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झलै फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोलै फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुनी।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। जानकी गांवपालिका से आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, अधिकांश पुराने नीति तथा कार्यक्रम है निरंतरता। टीकापुर में यह जेठ 23-24 गते अंतर्राष्ट्रीय व्यापी सम्मेलन हुईती, सम्मेलन में संघ प्रदेश के पदाधिकारी सहभागिता हुईना। आज विश्व वातावरण दिवस तमाम कार्यक्रम करके मनाईती। पश्चिमी प्रणाली सक्रिय हुईलगोर से मौसम वर्षा संगे तराई के तापक्रम बढ़ना। ओसुर पश्चिम के बजट वितरण मुखी से फिर नतीजा मुखी और युवा हुकरण रोजगारी सृजना हुई पर्ना सरकार वाला हुकरण की कहा। आप पूरा खबर। कैलाली के जानकी गांवपालिका से आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करलबा। गांवपालिका के 18 गांव सभा के विफेक दिन बैठल पहल बैठक में जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करलबाट गांवपालिका से विद्यालय उमेर समूह के सक्कू बाल बालिका हुकरण विद्यालय के पहुंच सुनिश्चित करती विद्यार्थी भर्ना सिकाई उपलब्धि और टिकाइना दर अभिवृद्धि करना हो दलित तथा विपन्न विद्यार्थी उपकरण छात्रवृत्ति एवं आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध करना नीति लेहलवा शिक्षा के गुणस्तर और सिकाई उपलब्धि मूलक सुधार के लग नतीजा विश्लेषण है नियंत्रणता विद्यार्थी मूल्यांकन प्रगति समीक्षा तथा आधारभूत कक्षा 8 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 में समेत लक्षित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम संचालन करना नीति गांवपालिका से लेहलवा। गांवपालिका है आर्थिक वर्ष 2084-85 में पोषण मैत्री पालिका घोषणा करना गांवपालिका के 15 संज्ञा के अस्पताल स्थापना के लग पहल करना तमाम रोग के स्क्रीनिंग शिविर संचालन करना सिकल सेल प्रभावित उपकरण के निशुल्क बीमा कार्यक्रम है निरंतरता देना फे गांवपालिका के निधि तथा कार्यक्रम में उल्लेख कर गिलवा। बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गांवपालिका घोषणा करना आवश्यक कार्यक्रम संचालन करना लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण के अवधारणा में काम करना मुक्त कमलरी उपकरण के उत्थान के लग आवश्यक पहल करना नीति लेहलवा। एक घर एक धारा स्वच्छ खाने पानी के अवधारणा में काम करना सामाजिक सुरक्षा तथा पंजीकरण हे प्रभावकारी बना के अति विपन्न तथा असहाय परिवार हुकरण कौन सदस्य की मृत्यु हुई गैल खंड में सामाजिक सहायता प्रवर्धन करना घर भेट कार्यक्रम संचालन करना नीति फे गांवपालिका से लेहलबा। गांवपालिका उत्पादन में आधारित कार्यक्रम है नियंत्रता देना बाली बीमा कार्यक्रम लागू करना कृषि एम्बुलेंस सेवा संचालन में लन्ना प्रांगारिक तथा जैविक मल के प्रयोग में अनुदान के व्यवस्था करना नीति तथा कार्यक्रम में समेटलबा। माघ में आधारित पशुपंक्षी पालन तालीम आयोजना करना पशुपंक्षी के खोप कार्यक्रम है नियंत्रता देना निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम है संचालन करना नीति फे गांवपालिका से लेहलबा। सहकारी संघ संस्था है क्षमता अभिवृद्धि विशेष जोर देना सहकारी संस्था दर्ता नियमन मर्जर खारेजी और अनुगमन के कार्यक्रम है प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करके लैजिना नीति तरह कार्यक्रम में उल्लेख कर गिलवा। गांवपालिका भीतर रहल होम स्टे है प्रबंधन करना स्थानीय मौलिक सांस्कृतिक वेशभूषा खानपान हस्तकला लोककला तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति है मार्फत समेत आंतरिक और बाह्य पर्यटक उपकरण प्रबंधन करना नीति तथा कार्यक्रम में समेत गिलवा। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करना उपकरण पुरस्कार देना मौसम पूर्वानुमान में आधारित पूर्व कार्य तथा समुदाय में आधारित विपद पूर्व तैयारी कार्यक्रम है प्रभावकारी रूप में संचालन करना नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख कर गिलवा। पूर्वाधार विकास क्षेत्र और गांवपालिका के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लग आवश्यक बजट के प्रबंध करना कुछ वाड़ा में भवन निर्माण तथा मरम्मत के लग पहल करना गांवपालिका में संचालन होती रहल अधूरा तथा कर्मगत योजना है, समय में सम्पन्न करनकलाग बजट के प्रबंध करना, नीति तथा कार्यक्रम में लेहलबा, कर संकलन के दायरा विस्तार करना, शून्य सहनशीलता के नीति अवलम्बन करती, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी हुकरण जवाबदेहिता अभिवृद्धि करना, नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख करगिलवा, गांवसभा में प्रस्तुत करगिल नीति तथा कार्यक्रम ऊपर कुछ गांव सभा सदस्य हुकरा आपन विचार धरल रहे, सभा के सदस्य हुकरा नीति तथा कार्यक्रम ऊपर धरल धारणामा छलफल हुई पाछे गांव पालिका के आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम सभामन से ध्वनिमत से स्वीकृत हुई बा। गांव सभा के दूसरा बैठक ऐन असार 5 गते दोपहर के 1 बजे बैठना करके पहल बैठक ओराइल के हो। विश्व वातावरण दिवस आज देशभर तमाम कार्यक्रम करके मनाई बाटे। समृद्ध भविष्य के आधार जलवायु एवं प्रकृति मैत्री विकास मूल नारा सहित सप्ताहव्यापी रूप में मनाइन लागल बताइल बा। दिवस के अवसर में वातावरण विभाग से ललितपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजन करती बा। विश्व वातावरण दिवस के मुख्य समारोह में कृषि वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी प्रमुख अतिथि के रूप में सहभागी रहना कार्यक्रम रहल बा। वातावरण विभाग से तमाम सरकारी निकाय विकास साझेदार वातावरणविद तथा सरकारवाला कार्यक्रम में उपस्थित हुना जनाइल बा। विभाग के महानिर्देशक ज्ञानुराज सुवेदी से वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन में चुनौती के सामना हो प्रकृति मैत्री विकास के प्रवर्धन विषय में सचेतना मूलक अभिवृद्धि करना विश्व वातावरण दिवस विशेष रूप में मनाइन लागिल जानकारी कराइले बाटे। खोजखबर में एक घड़ी विश्राम, विश्राम पाछ फेर सेवी सुनतिर बी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 को टोल भेला संचालन होने संबंधी अत्यंत जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 को आर्थिक वर्ष 2083-84 में संचालन हुने वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी भेला तफसील अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित गाउँ टोल र बलकका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई उपस्थितिका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। ब्लक नम्बर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 समितिपुर, ज्योतिनगर, दशघरुवा, सतघरुवा, राजीपुर, विपतपुर, दुर्गानगर, एकतानगर र विशालनगर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान ज्योतिनगर आधारभूत विद्यालय ज्योतिनगर जेठ 23 गते बिहान 7:30 बजे। ब्लक नम्बर 1, 2, 3, 14, 17, 18, 19, 20, 21 र शक्तिनगर, शिवनगर, एकतापुर, बाढ़ी पीड़ित, गणेशपुर, तीनघरुवा, भूपू कर्मचारी, भूपू कमैया र चमेलीपुर बस्तीहरूका लागि भेला हुने स्थान टीकापुर कन्या आधारभूत विद्यालय ब्लक नम्बर 18 जेठ 23 गते दिउँसो 2:30 बजे। ब्लक नम्बर 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 23 र व्यवसाय क्षेत्रका लागि भेला हुने स्थान राधाकृष्ण मन्दिर ब्लक नम्बर 9 जेठ 24 गते बिहान 7:30 बजे। ब्लक नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25 छेगरखैला र बनगाउँका तीनै पुरुवाको लागि भेला हुने स्थान साईमार्ट अगाडिको सार्वजनिक चोक ब्लक नम्बर 25 जेठ 24 गते दिउँसो 2:30 बजे। टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालय।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्। ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरेका सेवा, सम्पन्न गरेका काम, योजना र वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकोले तपाईँका गुनासा, प्रश्न वा सुझाव सहित तफसिलको मिति, स्थान र समयमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवालाहरू, सेवाग्राहीहरू, गैर सरकारी संस्था, वर्गर, नागरिक समाज, युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल जेठ 26 गते, समय दिउँसो 2 बजे, स्थान सुवर्णपुर स्थित कृषि भवन, जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय सुवर्णपुर।
0: विश्राम पछि फेर से स्वागत बा। सुरपश्चिम प्रदेश सरकार के अब के आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट से संघीय सरकार के बजट समेत नहीं सकला काम, संविधान त प्रदेश सरकार के दायित्व के काम ओ कुछ नवीन योजना संचालन करना, रोजगारी सृजना ओ समृद्ध प्रदेश बनैना में सहयोग पुगना करना, काम करना नागरिक के अपेक्षा देख गिलवा। अर्थशास्त्री सह प्राध्यापक डॉ केशर बहादुर कुंवर कृषि ओ पर्यटन हे रोजगारी के वृद्धि हुईना मेर के प्रतिफल देखिना, युवा हुकरण विदेश पलायन रोकना सेकले से योजना मा समेत बजेट लगानी कर पर्नमा जोर दिले बाटै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉ नाथुराम चौधरी फे प्राविधिक ओ व्यावसायिक शिक्षा दैके युवा हुकरण तत्काल रोजगारी देह सेक्ना विषय में लगानी करे पर्ना बटोले बाटै। टीकापुर अस्पताल विकास समिति के पूर्वाध्यक्ष छपत बहादुर सोराडी प्रदेश सरकार के टीकापुर अस्पताल है 100 संयार के बनैना नीति घोषणा कर सकले ओर से तदनुसार संगठन सर्वेक्षण करके जनशक्ति ओ पूर्वाधार विकास करके विशिष्ट क्रेड सेवा देह पर्नामा जोर दिले बाटै। व्यवसायी उपकरण के लगानी मा औसतक वितरण से फे नतीजामुखी हुई पर्नामा केरा उत्पादक किसान दीपेन्द्र चौधरी बजेट वितरण मुखी से फे क्षेत्रगत विषयगत रूप में विशिष्टीकरण हुई पर्नामा जोर दिले बाटै। कृषि पर्यटन व्यवसाय कालो हमाल पर्यटन पोइन्ट टू पोइन्ट मा समेत पर्यटकीय क्षेत्र के विकास कर सकला से सुरपश्चिम के पर्यटन व्यवसाय में सहजे फायदा ले सकना बटोले बाटै। प्रदेश सभा के पूर्व सदस्य उमा देवी बादी से संघ के विनियोजन से समेत निराशा बनैलक ओर से क्षेत्र है पूर्ति हुईना करके प्रदेश से बजेट लाने पर्नामा जोर दिले बाटै। टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख बलिराम चौधरी संघ की दृष्टि हो प्राथमिकता में नहीं पर्लक अत्यावश्यक योजना प्रदेश से हुईना अपेक्षा करल बटोले बाटै। मुलुक में हाल उपलो वायुमंडल मरलक न्यून चापीय रेखा तथा स्थानीय वायु के आंशिक प्रभाव रहलक ओर से देश के तमाम ठाउँमा मौसम बदलती बाकल से वर्षा फे हुई दिवा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल कोशी मधेश बागमती ओ सुरपश्चिम प्रदेश लगायत की देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बाकल से तराई के आंशिक अधिकांश क्षेत्र में मौसम मुख्यतया सफा रहना कहलवा। कोशी बागमती गंडकी लुम्बिनी ओ कर्णाली प्रदेश के कुछ तथा सुरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग में एक दुई स्थान में हल्का मध्यम खाल के वर्षा हुई रहलवा। महाशाखा से हाल दोपहर के कोशी प्रदेश लगायत के देश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बाकल से तराई क्षेत्र में आंशिक मौसम बदलन कहलवा। खोजखबर में एक घड़ी फेन से विश्राम, विश्राम पाछे फेर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
3: कर्णाली नमूना मावि टीकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
4: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
3: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
4: प्रणाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू
3: फराकिला कक्षाहरू
4: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको
3: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको
4: खेलकुद सुविधा
3: कम्प्युटर शिक्षा
4: स्वच्छ पिउने पानी
3: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
4: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 98584 24167।
3: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री
5: जानकी गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
4: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरी गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन धूम्रपान मद्यपान स्वतेजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराए कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
5: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति।
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैनै जे उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै निकर छु
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तुम्हें अब भी जाए।
8: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: विश्राम पासे फिर से स्वागत बा। कैलाली के टीकापुर में अंतरव्यवस्थापिका सम्मेलन हुना कहल बा। अन्तरव्यवस्थापिका मंच के आयोजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के व्यवस्थापन में हुई लागल सम्मेलन में यह 23 जेठ में उद्घाटन होने वा। सम्मेलन में प्रतिनिधि सभा के सभामुख उपसभामुख राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सातु प्रदेश के सभामुख उपसभामुख संघ और प्रदेश के सांसद के सचिवालय लगायत के सहभागिता रहना कहलबा। जेठ 24 गते घोषणा पत्र जारी करके सम्मेलन समापन करना करके कार्यक्रम तैयार करके सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के सभामुख भीम बहादुर भंडारी जानकारी देले बाटे। ओ कुशल भुर्तेल के लगातार दोसरा शतक बनायल पाछे नेपाल एशियन गेम्स पुरूष छनौट क्रिकेट प्रतियोगिता में विफेक दिन मलेशिया है 167 रन से पराजित करल बा। सिंगापुर में होती रहल प्रतियोगिता में लगातार दोसरा खेल जीती समूह ए के विजेता बनल के हो। कुशल से 126 रन बनायल पाछे ट्रस हार के बैटिंग पैलक नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट गुमा के 275 रन बनायल रहे जवाफ में मलेशिया से 9 विकेट गुमा के 108 रन के बनाई सकल रह। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। जानकी गाउँपालिका से आर्थिक वर्ष 2083-84 की नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अधिकांश पुरानी नीति तथा कार्यक्रम है निरंतरता। टीकापुर में यह जेठ 2324 गते अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन हुई। सम्मेलन में संघ और प्रदेश सरकार के पदाधिकारी सहभागी हुना। आज वातावरण दिवस तमाम कार्यक्रम करके मनाई थी। पश्चिमी प्रणाली सक्रिय हुई वर्षे वर्ष संगे तराई में तापक्रम बढ़ना हो। सुर पश्चिम में बजेट वितरण मुखी से फिर नतीजा मुखी और युवा हुकरण रोजगारी सृजना करना हुई पर सरकार वाला हुकरण की कहाई लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रे और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब बेगे खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनती रवि राम राम।

0: यादे मुस्तडोर ताज हेरो त बुढवा
1: ओहो त हेर बुढिया बरखक समय थेबा बखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुशी सपोथे आइ सकता
0: ओहो हो निका साक समझनो घर खांदा पादा सफास से बाहर से कच्चा का पहिलवा काटा पर ना रह
1: हां असि करी हेर बुढिया ओसिन हो कलश से काल मिट्टी ना ओ टेला रोटी पकाकर बासी छै दूसरा असल परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तनी भी
0: हुई था हो बुढ़वा असिन डाला मदद ध्यान ध्यान पोहर का पास भी था मा साप नुख बैठल रह सकते ना
1: वह और से तक कलक हो छाय समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से साप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में कर चबदार पड़ल दूसरा घर आंजर पांजर फसफार और सफा फील से साफ पहना का उत्साह कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना फिलक ओर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई से
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
7: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
6: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
7: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
6: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
7: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800076417।
4: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
5: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेडस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नंबर 9849585808।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाऊ से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाऊ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कापी हेरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक अनल झोला जस कटस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: लैंगिक हिंसा कुनै परिवारको निजी विषय होइन यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो यसका लागि नेपालमा थुप्रै कानूनहरू बनेका छन्
4: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 पीड़कलाई 3,000 देखि 25,000 जरिवाना र 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ
3: सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा गरेको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार पीड़कलाई 3,00,000 जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ
4: मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 पनि पीड़कलाई 2,00,000 जरिवाना वा 20 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ
3: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय नियमावली 2067 अझ पीड़कलाई घर बाहिर राखेर पीड़ितलाई संरचना त्मक आदेश दिन सक्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरिएको छ
5: त्यसैले हिंसा रोकौं सम्मान समानता र न्यायुक्त समाज निर्माण गरौं
4: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढी कैलाली

0: यादे मुस्तो डोरटा झेरो त बुरवा
1: ओहट हेर बुढिया बरखाक समय छेबा बखारिक मुहका रुकल बाकी मुसो आयल कलश आब मुसो खुशी सपोथे आइ सकता
0: ओहो होनिका ठक समझनो घरक अंदर पादर झफास छे बाहर से कत्ता कत्ता हिलबा काटा पना रह
1: असी करी हेर बुढिया ओ सिन्हो कलसे काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पकाक बासी छाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तनी भी
0: हुई था वो बुढ़वा असी डाला मदर ध्यान ध्यान फोहर झफास भी था मा ताप नुख बैठल रह सकते ना
1: वो हो सेटा कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुख कर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में का चबट डार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा फूल से साफ पहना का उष्टा कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना फिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
7: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
6: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्तशास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि, भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि, कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि, पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सीट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
7: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
9: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
8: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
9: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
8: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
9: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
8: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
9: ईसीजी सेवा,
8: डिजिटल एक्सरे सेवा
9: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
8: फोन नम्बर 98-484-27-359 र 98-48-72-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस तबातीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला जस कटरस बाटी। ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में। रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: घर परिवार में सभी बिरयानी
4: आखिर स्वस्थ रहना स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र?
3: कहिले कोही बिरानी, कहिले कोही बिरानी, म त दिक्क भइसक्यो। कसो कालले छिटो नलाग्यो
5: होइन चाहिने जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ, के भएको छ हो तलाई?
3: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या, कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसकेँ। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्यो हुन्छ, खानै सक्दैन।
5: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
6: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
7: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, खकरौला रोड, टिकापुर, कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9800710672
5: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: मौका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के ओस्ट पार्टी में गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिनी न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कान लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाए कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 98486 39 261।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98247025। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628225।
3: राहुल कमल हैन बुखाइल बाटो त
4: हेरि न काका, खाई फुला टुरे बारीमा गेल रही तपो काट देली, बीस निकाल देवी की कह के लैके आयल बाटो।
3: सब कटलक बीसक उपचार कर सर्पदम से उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई, वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ। बिखार सब कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना, एंटी भेनम से उपचार कर।
4: सर्पदम से उपचार केन्द्र विषय में मैं फिर सुनल त रहू, तर
3: कुछ दिन कही आयन तुरन्त उपचार केन्द्र ले जाँदा नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार गर एन्टी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध गरेठा। हस्तक्षेप चिन्ता लिहेनी परत
4: खाई ना तौ न, तुएन कुछ फेन नि हुई, मैं एम्बुलेन्स आना फोन कै सकले बाटो।
3: एम्बुलेन्स आपुगा समय लागत के था, मर छ सन्देश मोटरसाइकल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दिए। रे बाबू सन्देश, रोक छत बाहर आ।
5: सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा। यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा। सापनका कटाईले मनैनका मृत्यु नभएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध करैलबा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहर लह पठा। सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्याएर सेभिथा।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapureffm.org मोलाव सम्रपात्र और नेपाली पात्र में फेसिलिटी धरवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से विश्व वातावरण दिवस महिला 6300 बाल बालिका फलफूल के बिरूवा वितरण पथरेवा कर्णाली अध्यक्ष टटकीय समुदाय के 28 ठाव बढ़िया की कृत्रिम नमूनाभ्यास पाथरमा जीप दुर्घटना 40 चालक सहित 9 जना घाइते ओ सशस्त्र प्रहरी की नियंत्रण मलक 779 सवारी साधन छानबीन लाख समिति गठन पूरा खबर ओडिभिजन दर्ता हुलक बाल बालिका के पोषण सुधार जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण में सहयोग होस के फलफूल के बिरूवा वितरण कलक बोटा गिल्वा ओडिभिजन इंटरनेशनल नेपाल के सहयोग दिगो विकास समाज भजनीकी आयोजना और स्थानीय सरकार के समन्वय में कैलाली के 5 पालिका में 6300 फलफूल के बिरूवा वितरण कलबाट कैलाली के टीकापुर भजनी घोड़ाघोड़ी गौरीगंगा नगरपालिका और कैलारी गांवपालिका के 6300 बाल बालिका आप लिची और कागती के बिरूवा वितरण कलबाट वर्ल्ड फिजन इंटरनेशनल नेपाल के जिला संयोजक मंगल शाह बोटिलबाट बाल बालिका के पोषण और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग होस के एक बालिका एक बिरूवा कार्यक्रम कलक वहां के जलवायु परिवर्तन के धीरेसिन खाले असर देखी रह अवस्था में जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण करना बाल्यकाल से नहीं बाल बालिका प्रकृति चिन्हना और प्रकृति संरक्षण में सक्रिय कार्यकलाक बाल बालिका सिन बिरूवा फे हुर्कना सेक्ना हुलक बिरूवा वितरण कलक जीको विकास समाज भजनीकी सामाजिक परिचालक खुशीराम चौधरी बुटिलोट टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 7 के कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार चौधरी बाल बालिका फलफूल के बिरूवा वितरण कलक धेर फायदा हुना बुटिलोट बिरूवा पलक बाल बालिका को आप नाम में मिललक बिरूवा अपन लगाईना संरक्षण करना वो फलसे खाई पैना के बोटिलोट बालिका अंजलि चौधरी के घर में इंसियाघर लीची के बोट नहीं रह तर पैलक बोट अपन लगेलक बोट बिरूवा हरियर हुना खालकेलाक मजा हिलक फे बाट बुसलक अंजलि चौधरी बुटिलो बाटी अभिभावक विपना चौधरी के बच्चा नाम मिलक लीची के बिरूवा बासो जमीन में लगेना राम मजा से सिहार करना बिरूवा के वातावरण स्वास्थ्य के लाख मजा हिलक बुटिलो बाटी। प्रैक्टिकल एक्शन बी ग्रुप और स्थानीय पालिका के सहकार में स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति नमूनाभ्यास कलबाट नमूनाभ्यास 3 चरण सतर्कता चेतावनी तह खतरा तह में आधारित कल मिल रहे टीकापुर के वडा नंबर 6 भरतापुर में 84 घर में रहल हरेक वर्ष में बर्खाए में यहां पथरिया लदिया के किनार बढ़िया के जोखिम रह बढ़िया के अल से प्रभावित बैठक लाग दुई तले उच्च घर बा नमूना के अभ्यास के क्रम समुदाय में लग बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपंगता हुलक बढ़िया के कारण दुर्घटना में पलक उद्धार कर किरण रहे बढ़िया आयलक समुदाय में गठन हिलक खोज तथा उद्धार कार्यदल प्राथमिक उपचार कार्यदल की सक्रियता बढ़ेल रहे स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष फुलकुमारी चौधरी जैसी नमूना अभ्यास में सहभागी रहे आतंक के बढ़िया के समय में फिर एक अवधान साथ देना अनुरोध कलबाट स्थानीय आशा देवी चौधरी के पथरिया लद्या में 5.3 मीटर पानी पुग्ना खतरा तह पार हुना हुलक 3 तह के सूचना अनुसार गांव के सकुझान अभ्यास कलक बुटिलोट वडा नंबर 6 वडा सदस्य पूर्ण बहादुर नायक बढ़िया के समय में पूर्व सूचना में विश्वास करना समय में सकुझान सुरक्षित ठाव सरना समुदाय सचेत पूर्ण बुटिलोट प्रैक्टिकल एक्शन बी ग्रुप के कार्य में अधिकृत अंजु चौधरी दुईठो लद्या के टटकीय क्षेत्र के मैन के बढ़िया के समय में सुरक्षित धरकला नमूना अभ्यास कलक बोटेलबाट वहां के सतर्कता तह चेतावनी तह खतरा तह हुईलक कसिक सुरक्षित रहना कैके समुदाय सचेत करें 3 चरण के सूचना के आधार में कृत्रिम घटना अभ्यास कलक बोटेलबाट अनिता चौधरी भरतापुर मरलक सकू घर बढ़ियालक विस्थापित हुना कलक कि समय में नमूना अभ्यास करना सहज हुना बोटेलबाट खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पाछ फिर से विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिलाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बारो टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
0: मेची राजमार्ग अन्तर्गत पास थर्के भारफा सड़क खण्डकी जीप दुर्घटना हुलक चालक सहित 9 जना घाइती हुलबाट शुक्रबार दिनके झापाकी बिर्ता मोडमा से ताप्लेजुङ तर्फ जैती कलक जीपमा चालक सहित 13 जना रहे। उक्त जीप हिलीहाङ गाउँपालिका 6 स्थित चतुरे बजार लखन दुर्घटना पर्व अनियन्त्रित थोकी जीप सड़कमा गरीब 50 मिटर तर खसलक प्रहरी जनैलवा। दुर्घटनामा घाइते हुलक 9 जना मध्ये 7 जनाकै अवस्था सामान्य रहलक बोटेलोबाट। दुर्घटनाकै कारण खुल्न बाँकी रहल र घाइतेको उपचार तथा घटनाबारे थप विवरण संकलन हुटिरहल प्रहरी जनैलवाट। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, भारतीय विदेशी मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरकै मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान कलबाट नयाँ दिल्ली मरलक। उहाँ भारतीय समकक्षीय डाक्टर जयशंकरसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्न उहिना कार्यक्रम रहलबा। परराष्ट्र मन्त्रालयकै अनुसार उहाँ हुकुनकी बीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सम्पर्क, सञ्जाल, ऊर्जा तथा पछिहितो चासोकी विविध विषयमा विचार विमर्श हुनाबा। परराष्ट्र मन्त्रीकै यी भ्रमणमा नेपाल र भारत बीचकै बहुआयामिक सम्बन्ध अभिन्न सुदृढ तुलना सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नबाट। परराष्ट्र मन्त्री खनालले जेठ 24 स्वदेश लौट्न हुना कार्यक्रम रहलबा। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपकी सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार नै 5 दिन भारत भ्रमण नोराकी स्वदेश लौट्न हुलबाट। भारत भ्रमणकै क्रममा उहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाहसँग भारतकै सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता कलबाट दिल्ली हुटी अध्याय पुगलक सभापति लामिछाने शुक्रबार सन्झेक स्वदेश लौटना कार्यक्रम रहलबा। खोजखबरमा फेरि विश्राम, विश्राम पाछा फेरि विश्वतिर विशा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
5: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: असार 6 गते पहिलो शनिबार
5: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
6: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
0: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
5: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772
6: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
6: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
7: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
6: अब त म ढुक्क
8: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
7: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
9: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
10: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: विश्राम पासा फेरि स्वागत बा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकै राजस्व छलिकिया संघमा ध्यरसिंह थाउमसे नियन्त्रणमा लिलक 779 ठो विद्युतीय सवारी साधनकै सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकार एक समिति गठन गर्नबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकी कार्यालयकी विशेष निर्देशनमा बिहिबार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलकै प्रतिनिधि समिति संयुक्त छानबिन समिति गठन गर्न रहे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालकी अनुसार सरकार सुशासन राजस्व र छेकेलाक मामिलामा सचेत रहन तत्काल समिति गठन गरेकै कानूनी प्रक्रियाका बढ़िलोबाट समितिकी सवारी साधन नियन्त्रणमा लेक स्थलगत रूपमा पुगे दूत र गतिमा छानबिन शुरू गर्नसँग उहाँ जानकारी दिलबाट विज्ञ दाहालके कलक सवारी साधनकै भारी लको राजस्व भन्सार सम्बन्ध सबको कानूनी कागजातकै सूक्ष्म अध्ययनमा प्रमाणीकरण गर्न कुछ समय लग्न बाँकेकी छानबिन नै ओरासम्म धेरै गर्न आश्वस्त रहन हाम्रो अनुरोध गर्नबाटीका कि राज्य के अर्थतन्त्र वा कानून कार्यान्वयन बलियो बन्ने सरकार प्रतिबद्ध रहलक उहाँ स्पष्ट पर्नबाट यही समाचारसँग खोज खबर वरली जनाइसे पहिले खबरकी मुख्य शीर्षक फेर्सेक्छु विश्व वातावरण दिवस मनाइला 6300 बालबालिका फलफूलके बिरूवा वितरण पथैवा प्रणाली र देखे टहरिए समुदायकी 28 ठाउँमा बढ़ाएकी कृत्रिम नमूना अभ्यास पाथरमा जीव दुर्घटना चालक सहित 9 जना घाइते ओ सशस्त्र प्रहरी नियन्त्रण मण्डलक 779 सवारी साधन छानबिन लाख समिति गठन डिटा बुकला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटा बुकला खोज खबर से मई सीरा चौधरी बिदा हिटो एक पास 6 बजे की खोज खबर सुना सिग्वी सामुदायिक रेडियो टीका प्रशन सुनती रवि राम राम
11: ओह त हेर बुढिया बर्खाक समय खेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसुवा आयल कलश आब मुसुवा खुस्ती सपुवा फे आइसक था
12: ओहो हो निका ठ्याक्क सम्झनु घरक आन्जा पाजा झसास छ बाहस कथा कथा हिल बा काटा पर्ना रह
11: असी करी हेर बुढिया ओ सिन्हो कलशे काल मिट्टी नाओ टेला रोटी पकाक बासी छाई दोस्रा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई करबी दोस्रा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तनी हुई
12: मीठा हो गुरुवा असिन डाला मत ध्यान घास फोहर झपास बिल था मा ताप नुख बैठल रह सकते ना
11: वह और सेटा कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल झंग झंग घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना मेरका चबदार पड़ल दोसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा फुल से साफ ऐना तस्तः कम हो जाए
12: कल शनिश्चर थे हो बिहान का फुर्सत थे बा
13: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था ई मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
14: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम फे सांप मानव बस्ती लग आई सकता
15: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई खपट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
16: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: घर कहिया सिज्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
17: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
7: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
18: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषत हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
19: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
20: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़

0: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
1: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन नरियाल एमबीबीएस न्याम्स
2: यही जे 23 गते शनिबारका दिन
1: रिमाल मेडिकल हल

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जाइबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल
0: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जना का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाटा अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
0: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी जबसम्म हाम्रै सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुल्के विरोध करी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी
2: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश

0: हुक्का पिए रही था कभी पेंसिले रही था कभी झोले फटा का आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अन लबाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: 11 प्रकारका विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पतालमा। उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू,
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा, जोर्नीको दूरबीनबाट शल्यक्रिया,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पाठीघरको शल्यक्रिया सेवा,
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल सर्जनद्वारा विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया सेवा, ल्याप्रोस्कोपी दूरबीनको माध्यमबाट पेटको शल्यक्रिया सेवा,
0: जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा,
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा,
0: रोग सेवा,
1: मृगौलाका बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा,
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा,
2: हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार,
0: र सिटी स्क्यान सेवा,
1: गम्भीर बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू, एसडीयू, सीईओएनसी र बालबालिकाका लागि एसएनसीयू सेवा,
0: रोग पहिचानका लागि प्रयोगशाला सेवा, बायोकेमिस्ट्री, इम्युनोलोजी, हिस्टोप्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, पारासिटोलोजी, सेरोलोजी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, डिजिटल वीडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, डिजिटल एक्सरे सेवा, ईसीजी, फिजियोथेरापी सेवा, अस्पतालका अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य बीमा सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा,
1: फार्मासिस्टद्वारा फार्मेसी सेवा 24 घण्टा,
0: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाई,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा,
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-38, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
3: काली कर्णाली सांस्कृतिक समाजको साधारण सभा तथा नेउला खेल कार्यक्रम हुने बारेको सूचना, काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज टीकापुर कैलालीको वार्षिक उत्सव समारोह तथा लोक सांस्कृतिक नेउला खेल कार्यक्रम तपसिलको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकाले सम्पूर्ण आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य तथा संस्कृति प्रेमीहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। पहिलो वार्षिक उत्सव तथा दोस्रो साधारण सभा हुने मिति 2083 साल जेठ 23 गते दिउँसो 3 बजे, सभा सञ्चालन हुने स्थान टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 ब्लक नम्बर 15 स्थित खुला स्थल, नम्रता जैसी, दीपा साउट लगायतका कलाकारहरूको उपस्थितिमा नेउला खेलको समय बेलुकी 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म, दोस्रो दिन लोक नेउला सांस्कृतिक खेल सञ्चालन हुने मिति 2083 जेठ 24 गते समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म, स्थान ब्लक नम्बर 15 स्थित खुला स्थल, अध्यक्ष पदम बहादुर थापा छेत्री, काली कर्णाली सांस्कृतिक समाज टीकापुर।
4: ओहो त हेर बुढिया, बर्खाक समय थेबा पखारिक मुहका रुपकल बाकी मुसुवा आयल कलश आब मुसुवा खुस्ती सपुआ आइसक्छा।
5: ओहो हो निका, ठ्याक्क सम्झनु, घरक आँधा पाँदा झफा बाहर कस्ता कतिल बा काट पर्ना रह।
4: असी करी हेर बुढिया, ओसिन हो कलशे काल मिट्टी नाओ टेला रोटी पकाक बासी खाए, दोसरा सर परिवार मन मिलक सर सफाई करबी, दोसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन करबी तो नहीं हुई
5: मीठा हो बुढ़वा, असिन जाला मत ध्यान घास फोहर झफास भी था साप नुख बैठल रह सकते ना।
4: वह से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलख घरक आंजर पांजर रहल ढंग ढंग घास काटी, कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाए पड़ल, बखारिक मुहकर से साप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में तो चबट डार पड़ल, दोसरा घरक आंजर पांजर फसफार और सफा हुई से साफ कहना तो उसका कम हो जाए।
5: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसक थे बा
6: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था, ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पचना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
7: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सकता था,
8: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगा लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकती था।
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश